mulțumită, drumada leșo bine. Suna sini, sumă dura mașini.

FM 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसमी का गोल्डन सिटी चैनल है। आज सोमवार है, सक संवत 1948 के बैसाख माह की 21वीं तिथि। तदनुसार 11 मई सन 2026 सुबह के 11:08 होने को है हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दिन के 11:10 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सजीव प्रसारण। गुजरात के प्रभास पाटन सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा। सोमनाथ अमृत पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बस कुछ ही देर में।

0: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की

0: परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
1: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं विश्वेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
2: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहां पे सहस्र घट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
0: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
2: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न

0: उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है? क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है। अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरोद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्ज स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है, सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं, डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर

0: मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था। उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
1: Yes, you are absolutely right, Neelam. And as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: Parardhe manaha shiva sankalpamastu sumukachai kadantascha kapilo gajakarnaka धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
3: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं जैसे रूप मंडनम प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक

0: एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है। उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं, और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में, और वायुसेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy. Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj, too,

आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति, इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

Ruma, Rama, Harasaka, Sukasa, Kalatashu, the Tamaru.

Okay.

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: नीलम, द टाइम फॉर द सूर्य किरण, द एरोबैटिक टीम, द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT, the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed! And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। और आसमान
2: में जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा, और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप पे, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखें कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के

0: में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव है। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है।
1: जी, तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे, और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं, और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्युरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड that the Somnath temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष

0: धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहें और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को इंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष रूप की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है। और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सके। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
1: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
3: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
2: In Himachal Pradesh, 6 tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district.

0: amid heavy rain and strong winds. Four others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, five were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said, on this day, India recalls with pride the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department, IMD, amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today. Amid weak global cues, the Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं, उसी बिना किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाहरी दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की

0: बात है, उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैसे है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना है कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
0: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
0: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है? जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण अपान उदान समान व्यान नाग कूर्म क्रक्कल देवदत्त धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसेद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उसे नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सौर लोक कहा। इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये 3 प्राण, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रहकर प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से नेत्रों से अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।

0: जी
1: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है। लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्वों में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विक्षेप कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
0: जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
1: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
0: जी,
1: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले। अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार की शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
0: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
1: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
0: जी,
1: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, तो जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग।

0: करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
1: यस एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now. And meanwhile, we bring you some devotional bhajan.

0: And the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Bhai Patel, and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat, Sri Harsha Sanghvi, are also present. And the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं और पारंपरिक परिधान कुछ धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया और साथ ही अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
0: प्रधानमंत्री Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the

0: And also, the stamp has been now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
1: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय
0: coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
0: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादि देव महादेव की

विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को,

मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुछ ही प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे। और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन

मिशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसका भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने

इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर

अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश पर प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाए जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है,

0: उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित, ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travels of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture. And he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण

0: करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। दिन के 1:15 होने वाले हैं। ठीक 1:15 से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इसके बाद श्री मोदी ने सोमनाथ पर डाक टिकट जारी कर जनसभा को संबोधित किया। इधर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है। देशवासी एकजुट होकर संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं।
2: हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर खाटू श्याम जी नाथ द्वारा केशोराय पाटन गिरिराज जी चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर खाटू श्याम जी देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं।
1: प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं।

पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकजुटता से काम करने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के इस्तेमाल को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक साल के लिए विदेश भ्रमण टालने का भी आग्रह किया है। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने और अत्यधिक सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने की बात कही। साथ ही लोगों से खाने के तेल के उपभोग में कमी लाने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से विदेश से आया

0: कथित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग की बात कही। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए स्थानीय वस्तुओं की खरीदारी पर जोर दिया। डीग जिले के जटेरी से अब आदि बद्री खो बरसाना और मथुरा को जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कल डीग के जटेरी गांव में आयोजित संध्या चौपाल में शिरकत की। उन्होंने ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि जटेरी को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री बेढम ने कहा कि गांव से जुड़ा नया धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित होने से आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जटेरी और पुंचरी में कुंडों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कोटा के मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की स्थिति पर दोनों अस्पतालों में गंभीर संक्रमण और स्वास्थ्य जटिलताओं के 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डॉक्टर नीलेश जैन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी इन मामलों को हाई रिस्क वाला बता रही है। अब तक दोनों अस्पतालों में 4 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है, वहीं 4 अन्य प्रसूताएं किडनी खराब होने की समस्या से जूझ रही हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सरिस्का में वन्य जीव अस्पताल और जांच केंद्र को मंजूरी दे दी है। इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों का उपचार अब सरिस्का में ही हो सकेगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जल्दी ही अस्पताल का काम शुरू किया जाएगा। अभयारण्य में बाघ बघेरों के अलावा सांभर और चीतल सहित करीब 20,000 वन्य जीव है। इनके बीमार और जख्मी होने की स्थिति में इन्हें स्थानीय स्तर पर भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जैसमे का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मोमल।

0: मुमल सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी शीतल
1: और प्रीति का
0: प्यार भरा नमस्कार। प्रीति, हाँ, मुमल कार्यक्रम के जरिए हम हर बार अपनी सखियों को कुछ ऐसी ऐसी बातें, मतलब ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जिससे हमारी सखियों का फायदा ही हो। तो प्रीति, देखा जाए तो जब जैसे अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, पहले के समय की बात करूं, तब हमारे घरों में आपने देखा होगा कि जब हमारी जो दादियां थी वो लकड़ी के चूल्हों पे खाना बनाती थी, और साथ ही साथ जो है कि पानी के लिए बाहर से, मतलब जो नदी तालाब आसपास थे वहां से पानी भर के लाती थी, मिट्टी के लेप से घर कमरे को ठंडा रखती थी। तो ये उस समय, मतलब लेकिन धीरे धीरे देखिए कि आप, समय बदलता गया, लोगों की सोच बदलती गई, हमारे जो रहने सहने का जो तरीका है वो भी साथ में बदलता गया। तो समय के साथ आप देखिए कि जो मिट्टी के चूल्हे थे उसकी जगह गैस चूल्हे ले ली। आज हमारे घरों में नलों के अंदर से सीधा पानी घर के अंदर आता है। आज हमारा बाहर जाके हमें पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही साथ जो है, घरों को पहले पंखे थे, हाथ पंखे आए, फिर पंखे आए, तो उसके बाद कूलर आया, और अब तो एसी आ गया है। तो जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे चीज़ें बदली, हमने भी अपने आप को वैसे ही ढाल लिया। तो ये तो हुई हमारी सुविधाओं की बात प्रीति, लेकिन महिलाएं जो है वो समय के साथ उनकी सोच भी बदली। पहले वो बाहरी का, मतलब घरेलू काम ही करती थी, घर को ही पूरा संभालती थी। आज देखिए महिलाएं जो है बाहरी काम भी बहुत अच्छे से करती है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र हो, या मैं कहती हूँ कोई भी क्षेत्र हो, कॉरपोरेट क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं जो है अपना परचम लहरा रही है। तो जैसे समय के साथ हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बदले हैं, तो आज की महिलाओं को उसी तरीके से समय के साथ बदलना चाहिए। और अगर समय के साथ बदलना है तो आज का

0: समय जो है तकनीकी को अपनाने का, जो टेक्नोलॉजी कहते हैं ना हर चीज को अपनाने का, तो जब हम हाथ पंखे से एसी तक आ सकते हैं, तो आज की महिलाएं जो है वो घर के जो कहते हैं ना कि घर के कामों के साथ साथ कंप्यूटर हुआ, एआई का जमाना हो गया है, टेक्नोलॉजी कोडिंग हो गई है, तो इनको भी सीख के वो अपना जो बाहर और भी नई चीजें सीख सकती है।
1: बिल्कुल शीतल, ये बिल्कुल सही कहा है कि जो पहले की महिलाएं थी वो सारे काम हाथ से करती थी, और अब जो है कि करती वही महिलाएं काम है, लेकिन हाथ से नहीं, आजकल हर जगह तकनीकी आ गई और महिलाओं ने वो सीख भी ली, और उसको सीखना भी चाहिए क्योंकि आज का विज्ञान का युग है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम सीखेंगे तो हम अपनी पिछली जनरेशन को वो चीज़ सिखा सकेंगे। कई बार होता है कि हम अपने आलस में बहुत सारी चीजें नहीं सीखते, जैसे आज है फोन है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप है, फोन है, फोन को भी एक सीमित तक रखा हुआ है महिलाएं। जैसे कई बार होते हैं ना कि जितना उन्हें काम है उतना है, लेकिन आज ये कि इस फोन के जरिए आप घर बैठे बहुत बड़े बिजनेस कर सकती हैं महिलाएं। तो ये एक नई तकनीकी है सीखने के लिए, कि कई बार महिलाएं ऐसी होती है ना कि बाहर नहीं जा पाती, कोई कारण से अपना बाहर बिजनेस नहीं कर पाती, तो घर बैठे भी बिजनेस कर सकती है। तो ये सबसे बड़ी तकनीकी है कि घर बैठे आप सबसे बड़ा बिजनेस घर पे बैठे कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत है। बस ये है कि आपको थोड़ी सी नई तकनीकी के साथ चलना होगा, लैपटॉप कंप्यूटर ये सब चीज़ें आप सीखो और एक समाज मतलब कह सकते हैं कि युग के साथ आगे बढ़ो। और ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में महिलाएं आगे चल रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि अगर कहीं युद्ध हो जाता है तो महिलाएं बराबर अपनी भागीदारी दे रही हैं। तो ये है कि आज की महिलाएं वो पहले वाली महिलाएं नहीं रही हैं जो चुपचाप बैठ के घर में बैठ कर ये सोचे कि बस हमें तो 2 वक्त का खाना मिल रहा है और हमें क्या चाहिए, बच्चों की परवरिश करनी। नहीं, आज वो बच्चों की परवरिश भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, और पास साथ के साथ बाहरी दुनिया में भी कदम रखकर अपना एक कहते हैं अपनी एक जगह बना रही है और बना भी चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए कि वो पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं और अपना रुतबा खड़ा कर रही हैं। तो ये कहते हैं कि आज की महिला कह सकते हैं कि कमजोर नहीं है, आज महिला सशक्तिकरण का जमाना है।
0: एकदम आपने सही कहा, और अपनी चर्चा में मैं अंत में अपनी सखियों से प्रीति हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जैसे कहते हैं ना कि आज की नारी सब पे भारी,
1: भारी
0: तो वही बात उसी मतलब बात को उसी कथन को हमें सार्थक करना है, और हमें जो जितनी भी नई तकनीकें हैं उन सबको अपनाना चाहिए सी, और जिन्हें अगर मान लो आप नहीं अपना पाते उन्हें सीखे सीखने की कोशिश कीजिए। आप देखिए अभी ये जो आप रिसेंटली देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम घर पे बैठ के काम करने की सलाह दी, तो वो घर पे बैठ के काम कैसे होगा, नई तकनीक जो होती है उससे कंप्यूटर लैपटॉप के जरिए आप अपने घर बैठे भी काम कर सकते हैं। तो हम महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि आप भी जितनी भी नई तकनीकें हैं उनको सीखिए, उनका इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए और आने वाले समय में आपके पूरे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अब बातें तो और होती रहेगी प्रीति, हम हमारी सखियों को सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

Time.

मोहब्बत हूँ मैं मुझको लब से लगा ले बुझा ले तू धड़कन की प्यार गुलाबों के साए खयालों में छाए न था।

0: पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: प्रीति हमने हमारी सखियों से कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कि हमारी सखियों को जो है नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए और नई तकनीकों के साथ ही उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय जैसे जैसे बदल रहा है हमें भी अपनी सोच को और अपनी चीज़ों अपने जो रहन सहन है उसको बदलना चाहिए। तो बात अगर तकनीक की करें तो प्रीति आज का दिन तकनीक के हिसाब से बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज 11 मई है और आज हर साल 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये दिन जो है 1998 में पोखरण में जो सफल परमाणु परीक्षण हुआ था उसके साथ ही साथ जो भारत की तकनीकी प्रगति है उसको समर्पित है। इस दिन वैज्ञानिक इंजीनियर और तकनीकी क्षेत्र की उपलब्धियों का जो है वो सम्मान किया जाता है। साथ ही साथ इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में जब सफलतापूर्वक परमाणु ब्रह्म का परीक्षण किया था उसके बाद जो हमारा भारत था वो परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया था। तो उसके साथ और भी इसकी कई उपलब्धियां हैं। तो प्रीति आप हमारे सखियों को बताइए कि प्रौद्योगिकी के दिवस में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके बाद और क्या क्या उपलब्धियां थी जिसके कारण आज के दिन हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं।
5: हाँ शीतल, इस दिन भारत ने स्वदेशी विमान हंसा 3 की पहली उड़ान त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था और शुरुआती प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन उपलब्धियों को याद करने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया था कि मतलब हम उनकी उपलब्धियों को याद रखें, भूले नहीं। जैसे परमाणु परीक्षण हुआ, फिर ये त्रिशूल मिसाइल हुआ, हंसा हुआ, कि ये सारी उपलब्धियाँ थी, इनको याद किया जाए और फिर ऐसा सोचा कि फिर ऐसी नई तकनीकें भी आगे भी बढ़ती रहें और देश का विकास होता रहे, जिसे पहली बार 99 में मनाया गया था। मतलब ऐसे बहुत सारे इसका मतलब सीधा सा अगर हम कहें कि सीधी सी भाषा में कहें एक नवाचार की, जैसे कहते हैं एक नवाचार को आगे और रोशनी मिले और भारत आत्मनिर्भर और बने, तो बस ऐसी जैसे जैसे नई नई प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे नवाचार होता रहेगा और भारत का विकास होता रहेगा।
4: एकदम सही कहा आपने। और जो भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है वो इस अवसर पर हमारे जो वैज्ञानिक है और जो नव प्रवर्तक है, जैसा आपने कहा नवाचार, तो जो नए प्रवर्तक होते हैं उनको सम्मानित करता है। साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारा भारत है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे। और इसके साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश के वैज्ञानिक समुदाय की कड़ी मेहनत और तकनीकी उपलब्धियों के जश्न मनाने का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। तो आगे भी आपसे सखियों और भी कई चर्चाएं करेंगे, आइए उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

बहनों, अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी बॉर्डर। गीत को आवाज दी थी भरत शाह ने। शीतल, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, और वो भी सब जन नागरिकों की सुविधाओं के लिए। उसमें से एक योजना है स्टार्टअप ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसमें बहनों जैसे कि आप कोई लोन ले रहे हैं तो आपको छूट मिलेगी, और आप जो भी जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रतिशत लाभ मिलेगा। लेकिन यह है कि एक चीज जरूरी है कि ये स्टार्टअप ऑफ इंडिया DBT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 10 लाख 10 साल तक कर से छूट मिल सकती है। मतलब आप जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो उस पर आपको पूरी छूट मिलेगी। लेकिन एक चीज और भी है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो

0: 16 जनवरी 2026 10 साल पूरे हो गए थे। तो मतलब इसकी जो सुविधाएं मिल रही है जनता को वो यही है कि ये इससे आप अपना कोई बिजनेस, अपना कोई कार्य ये सब शुरू कर सकते हैं। दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम मोदी जी ने ये बनाया था, और इसका ये था कि 5,000 से भी कम स्टार्टर थे, अब बढ़कर 2 लाख हो गए। मतलब इतने लोग इससे जुड़ गए हैं और इतने लोगों को फायदा भी हुआ है। तो ये है कि जब हर जगह आपको फायदा मिल रहा है, सरकार फायदा दे रही है, तो आप उसका फायदा होता है और हर योजना के बारे में सुने और उसका पूरा पता करें और उस योजना के भागीदारी बने।
1: कृति आपने एकदम सही कहा, पीएम स्टार्टअप इंडिया। सखियों, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब यही है कि हम अपना खुद का रोजगार जो होता है, हम खुद का उद्योग जो है, हम खुद के रोजगार के बारे में चालू कर अपना छोटा सा बिजनेस करें। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो स्टार्टअप जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेफर करती है, वो चाहती है कि हम नौकरी की बजाय स्टार्टअप करें और लोग खुद रोजगार दें, हम रोज जॉब क्रिएटर बने। जॉब क्रिएटर मतलब हम किसी के नीचे काम ना करें, हम खुद रोजगार दें। तो उन्हीं लोगों सबको देखते हुए भारत सरकार ने जो ये बहुत ही अच्छी पहल चालू की थी, जैसा कि प्रीति ने बताया कि 16 जनवरी 2016 को देश में स्टार्टअप चालू हुए थे, और इनका उद्देश्य यही था कि जितने भी जो नवाचार है, जिनके भी जो लोगों के नए आइडियाज है और जो उद्यमशीलता है उसको बढ़ावा देना। इससे क्या होता है कि सरकारी बाधाएं कम हो जाती है, कर में छूट मिलती है, और साथ ही साथ वित्तीय सहायता के माध्यम से एक मजबूत इकोसिस्टम बनता है। और जैसा अभी प्रीति ने बताया, मैं आपको बताना चाहती हूँ सखियों कि जो भारत है आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। कारण कारण सिर्फ यही है कि लोगों को जो है कि उड़ने के पंख दिए गए हैं। युवा है जिनके पास कई आइडियाज है, लेकिन उनको जो आर्थिक स्थिति जो होती है ना, वो कई बार किसी की इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपने स्टार्टअप को जो है वो चालू कर सके। तो इसके अंदर आपको कई जो है आर्थिक जो उपलब्धियां मिलती है, कि जैसे आपको लगातार 3 वर्षों तक अगर आपने कोई भी स्टार्टअप चालू किया है तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, आपको श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत अनुपालन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो आईपीआर होता है पंजीकरण करते, उसमें भी 80% तक की छूट मिलती है। शुरुआती चरण के लिए आपको 20 लाख रुपए तक की ग्रांट फंड मिलता है, जो भी बहुत बड़ा होता है। और इसके साथ जैसे ये स्टार्टअप ऐसा होता है कि देखिए, पहले के समय में लोग रोजगार चालू करने से पहले, खुद का स्टार्टअप, खुद का उद्योग चालू करने से पहले प्रीति सोचते थे, लेकिन जब से ये योजना चालू हुई है, लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है, तो इस 10 सालों में आप देखिए कि जहाँ कुछ मतलब कुछ चुनिंदा ही स्टार्टअप चालू होते थे, आज 2 लाख से अधिक स्टार्टअप जो है उनको मान्यता भारत सरकार की तरफ से मिल चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी, हमारी जो महिलाएं हैं, वो इस योजना के अंतर्गत शामिल होए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए, और अपने जो नए नए विचार है उससे आप भी एक अपना अच्छा स्टार्टअप खोलिए। अब सखियों, आगे भी आपसे बातें तो करते रहेंगे, आइए पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी ने। प्रीति, हमने हमारी सखियों से आज कितनी अच्छी एक योजनाओं के बारे में बात करी। आज उनको बताया कि किस तरीके से तकनीकी को अपना के वो मतलब अपना फ्यूचर भी सेफ कर सकती है और अपने बच्चों के लिए भी आगे वो कई मार्ग खोल सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें परिवार की, जो महिलाओं के लिए, तो कहते हैं ना कि परिवार की जो धुरी होती है, जो मतलब वो महिलाएं होती है, लेकिन उस धुरी के जो परिवार होता है उसकी जो नींव खड़ी होती है, वो खड़ी होती है हमारे संस्कारों से। जितने अच्छे हमारे संस्कार होंगे उतना ही मतलब आप जितनी अच्छी सीख होगी हमारे परिवार की, समाज से जो हमें सीख मिलेगी, तो वही सीख आगे जाके हम हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हम हमारे बच्चों में सही गलत में फर्क करना सिखाएंगे, बड़ों का सम्मान करना सिखाएंगे, प्रेम पूर्वक उन्हें रहना सिखाएंगे, अनुशासित जीवन जीना सिखाएंगे, दूसरों की मदद करना सिखाएंगे, तो ये सारी चीजें क्या होगी आगे जाके हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे आचरण विचार व्यवहार में नैतिकता, शिष्टता और मानवीय मूल्यों का जो कहते हैं ना कि मतलब एक समावेश हो जाएगी। बच्चा समझ जाएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है बुरा है। और ये जरूरी नहीं कि ये संस्कार सिर्फ हमारे बच्चों के लिए ही है, ये संस्कार हमारे सबके लिए है कि हम सबको इस तरीके से लोगों से व्यवहार जो है करना चाहिए। क्योंकि जो अच्छे संस्कार होते हैं, अगर आप बड़ों का सम्मान करेंगे, आप मीठी वाणी बोलेंगे, तो आप हमेशा सत्य और विनम्रता से बोलेंगे, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई आपको दुखी करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि जितने भी लोग हैं वो समय से मतलब हर वक्त आपकी जो है अप्रिशिएट ही करेंगे, आपको बढ़ावा ही देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि संस्कार जो है बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से दादी नानी के जरिए हम अच्छे संस्कार दें, ताकि आगे जाके वो एक अच्छा व्यक्ति बने।
1: बिल्कुल शीतल, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में वो बच्चे कितना भी ज्ञान लेते हैं, जैसे संस्कार जो होता है वो बच्चों को घर से ही मिलता है, और वो भी अगर हम ज्वाइंट फैमिली रहते हैं तो हमारे मम दादा दादी नाना नानी इनसे मिलता है, क्योंकि संस्कार की नींव घर से ही मिलती है। और ये इंसान बच्चों में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमें बच्चों के बोलने से चलने से इनसे पता चलता है कि वो सांसारिक है या नहीं है, क्योंकि संस्कार बच्चे के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके अनुशासन के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना संस्कार के बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बिना संस्कारी बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा जब उसको यही नहीं पता हो कि बड़ों का आदर छोटों का प्यार क्या होता है। इसलिए बच्चों का अगर उज्जवल भविष्य बनाना तो पहले उसे अनुशासित और संस्कारी बनाए, तभी हम बच्चे का विकास कर सकते हैं और बच्चों को आगे बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि एक संसारी जब इस बच्चे को जब संसार मिलते हैं संसारी, तो वो आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़कर ही वो अपना विकास कर सकता है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना है बच्चों को, सबसे बड़ा जरूरी होता है उसको बड़ों का आदर होना चाहिए। और ये हमें एक कहते हैं, या तो फिर ये चीजें हमें एक संयुक्त परिवार में मिल सकती है। तो संयुक्त परिवार में हम देखा कि संयुक्त परिवार है तो इसका मतलब परिवार वैसे भी संसारिक है, और अगर वो संसारिक नहीं आए तो वैसे भी काम चंद्र के चक्कर में न्यूक्लियर फैमिलियां होती जा रही है, बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए। लेकिन ये जरूरी है, बच्चों में संस्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये संस्कार बच्चों को बचपन से ही दिए जाते हैं। तो बहनों, आपके साथ बातें बहुत सारी करनी थी, पर घड़ी की सुइया हमें अपना प्रोग्राम यहीं रोकने के लिए कह रही है। आपकी सखी प्रीति
0: और शीतल को दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम मोमल। ये आकाशवाणी जैसमे का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजे हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार।

0: And the midday news.
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री

0: मंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है।

0: मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: Christmas guy.
1: ये आकाशवाणी जैसमय का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
3: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशाह इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
3: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए। हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
3: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
3: श्रोताओं इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
3: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
3: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
3: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
3: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
3: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 19

0: 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करना दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था। जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही

0: अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो। नाथू सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उन

0: के पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, ज्यों-ज्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, पर वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम।

0: दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंत्री वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। और मंत्री क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं, क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं, और जो नहीं बनाते हैं तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है। या आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही।
1: बिल्कुल।
2: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं, तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गाँव में जब जाते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसे एक साथ नहा रही हैं, गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
1: ठंडी रहती है,
2: तभी निकलती है। तो हमसे जितना हो सके हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है जहां भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलिथीन को भी

0: चबाते रहते हैं इस गर्मी के मौसम में। अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं और यही पॉलिथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है जो उनकी बीमारी का भी अस्वस्थता का कारण यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
1: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलिथीन वगैरह प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहाँ डालते वहां डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखिए क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन, इसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर
0: क्या बात है,
1: तो हम पढ़ेंगे आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले
0: हैं। वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
1: नहीं नहीं
0: है ना, ये गलत बात है ना,
1: ये अगली बार के लिए एक बार बताएंगे खिलाएंगे है ना। कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो।
0: अच्छा,
1: इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनते हैं ये गीत।
2: जे हम तुम चोरी से बंधे।

0: हाँ तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था, और वैसे देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना तो यही गाना गुनगुनाती हुई।
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देती है, लगता बस एक बार नाच ही लो,
0: नाच ही लो, तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा ये तो वही जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा।

0: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक। चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे, वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दे या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाए। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया, कितना ही उबालो न कहीं मलाई का पता न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था, शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो, आठ आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचक मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
4: ये क्या है इतना खराब दूध, ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
3: मैं नौकर को मना करता, वो कहती,
4: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती, क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो,

0: भला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना, रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
1: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे, ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती, या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर के, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं, मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, श्रीहन आंखों में धूल झोंकेंगे, और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया, मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया, गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है, उसे दूहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत, बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा, थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे, उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
2: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधार, एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए, अभी पहली बार ही बियाई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
1: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था, फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा, जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले, एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर, मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ, पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था, लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है, बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ, इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया, घर में जो कुछ झूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिलाती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी, जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
2: अरे साहब देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी, यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
1: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए, वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग है, कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था, लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर

0: अगर आम और महुए का बाग बाग से निकलिए तो कचरियों के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। ढाई शेर की जगह मुश्किल से शेर भर दूध निकलता था, लेकिन ये तस्कीन थी कि दूध खालिस है। यह क्या कम है? मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी? लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करे। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
1: बाबूजी इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कानी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
2: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताए हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बता देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सोचता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
3: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ खबरदार, जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
0: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
3: मेरा एहसान तो मानोगी ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
0: खिदमतगार।

0: फिर जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
1: अरे साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
0: मैंने कहा तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
1: देखिए मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
0: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची, मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से, पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे, राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
2: अरे ये क्या करते हो बाबूजी, आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का, लाइए मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न समझा, इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह। जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
2: ये पत्तियां कहां रख जाऊं।
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
2: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली, उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते, कोई बात मतलब से खाली गई।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार। तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से

0: परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार अंत में जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं। ये सोच करके ये आसान होगा, परिणाम बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी से समीक्षा लिख कर दीजिए इन्होंने।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु है जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लेकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के प्रमुख कारण है, यहाँ से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीक की, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
0: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था
1: जी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीक है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं तो उनको एक कहना चाहिए एक सम्मान देने के लिए दिवस मनाया जाता है। और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत

0: देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आजादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती, परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहां एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है। आप खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने देखा है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे,
0: और डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे, और रूठना मनाना तो चलता
1: चलता ही था।

0: गाना बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही प्रेरक आपने सुनाया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाव, सावधानियां और रोकथाम।
1: देखिए, कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी होता है
0: जी।
1: मेन ये चीज सीखना जरूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहां पे शालेय एजुकेशन देके इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होके उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया। तो दूसरी एक स्ट्रेटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के अभी शादी करेंगे और बच्चे बड़ा होंगे, तो उनको एजुकेशन देना। ये भी मतलब इसमें जो होता है उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हम लोग जैसे कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है
0: जी।
1: अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने बहुत सारी लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई, तो भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की को कुछ भी हो शादी होना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो एक दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है, जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है
0: जी।
1: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में?
1: देखिए, कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर की दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली वो पूरी तरह से अलग हो जा चुकी है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज के तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म किए, जैसे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेड क्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशन पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है, जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपलसरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपलसरी कही गई। तो उसकी वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया गया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं,
0: तो
1: इंडिविजुअलिटी जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजी से फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो

0: ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर। वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो, समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ जरूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
0: देखिए अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाए जा रहा था। एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा दिल के करीब है, रोक पिक्चर का मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहां का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है, तो इसके लिए उनका काउंसिलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्टमार्टम, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा, वो इसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो किसी वक्त जाते

0: हो, तब ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा, समझो आधी बीमारी है, एक में नहीं है तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है, दोनों को नहीं है तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में। और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की यह है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। यह हमें जानना जरूरी है क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो। तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
1: और डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
0: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
1: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है। और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
0: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाचते हुए दिखाती है। और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का दीवानी मस्तानी।

0: तो बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए, घड़ी की ओर नजर डालते हुए हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमेटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने में थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है और फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
0: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे जरूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: शुक्रिया राजेंद्र जी।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वेस्ली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी साथियों को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम जब भी आपसे मिलते हैं तो किसी न किसी विषय पर चर्चा करके अपने नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, परंतु कभी कभी हमारे पास नॉलेज तो होता है पर हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि

आप सभी को पता है प्लास्टिक को ना कहना, ये पता सभी को है, पर इसे अपने डेली रूटीन में लाना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है। आप नहीं जानते हैं कि प्लास्टिक एक सामान्य शब्द है जो सिंथेटिक या अर्ध सिंथेटिक सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला के इस्तेमाल से होता है। इसका उपयोग हमारे रोजमर्रा के जीवन में उत्पादों की विशाल और बढ़ती हुई श्रृंखला में किया जाता है, जैसे कि डिस्पोजेबल पानी की बॉटल्स, पैकेजिंग से लेकर खिलौने, वस्त्र, सैकड़ों अन्य सामान वस्तुएं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं वो सब प्लास्टिक की बनी हैं। और प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक है ये हम जानते सभी हैं, पर मानते कोई नहीं। प्लास्टिक सर्वव्यापी हो चुका है, फिर भी यह मानव और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, यह हमें मानना ही होगा। प्लास्टिक प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल सहित जीवाश्म ईंधन के साथ रसायनों से बना है। विश्व स्तर पर प्रति वर्ष 3 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, और इसका आधा हिस्सा एकल उपयोग वाला प्लास्टिक होता है, जैसे पानी और सोडा की जो बॉटल्स होती है, प्लास्टिक के किराने की जो थैले होते हैं, पैकेजिंग उत्पाद होते हैं, स्ट्रॉ, कॉफी कप, ये सब चीज़ें जो एक बार उपयोग करने के बाद में हम फेंक देते हैं। इन प्लास्टिक के उत्पाद से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है, और जहरीले रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक मानव, वनस्पति, पशु स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालता है और हमारे पारिस्थितिक तंत्र में भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिससे हमारी भूमि, वायु और जलमार्ग प्रदूषित होते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण विशेष रूप से पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया और पूरे जीवन चक्र के दौरान उपयोग किए जाने वाले और उत्पन्न होने वाले रसायन विषैले होते हैं। हाल ही की सोच से पता चला है कि प्लास्टिक मानव रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है और मृत्यु तक हमारे शरीर में स्थायी रूप से रह सकता है। चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से जो प्लास्टिक है वो इंसानों और पर्यावरण पर कहर बरपा रहा है। प्लास्टिक जो है वो कभी विघटित नहीं होते, लेकिन वे टूटकर छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े बनाते हैं जो पर्यावरण में स्थायी प्रदूषक बने रहते हैं। मैक्रो और माइक्रो प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और एक महासागरों और वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा करते हैं। अब तक निर्मित प्लास्टिक का हर टुकड़ा प्रदूषण की समस्या बना है। महासागरों और जलमार्गों में, लैंडफिल में, पूरे पर्यावरण में जलाए गए प्लास्टिक से अत्यधिक विषैला वायु प्रदूषण और खतरनाक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, जो एक गंभीर निपटान समस्या बनी है। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 500 अरब डिस्पोजेबल प्लास्टिक कपों का उपयोग होता है। अनुमानतः प्रतिदिन 1.3 अरब प्लास्टिक बोतल का उपयोग होता है, यानी कि प्रति मिनट 10 लाख बोतल। हम प्रति वर्ष 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग करते हैं, यानी कि प्रति सेकंड 16 लाख बैग, और अनुमानित आंकड़ों के आधार पर विश्व के तटों पर 437 मिलियन से 8.3 अरब प्लास्टिक स्ट्रॉ मौजूद हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि हमें तो ये लगता है कि हमने तो सिर्फ एक ही बॉटल, अरे आप जैसे बहुत हैं यहाँ पे, वो एक एक करते कब वो लाखों में संख्या बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और यहाँ प्लास्टिक के ढेर लग जाते हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और निपटान में बहुत से चेंजेस करने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि इसके रसायनों से जो विषैला पदार्थ बन रहा है वो कम हो जाए। प्लास्टिक उत्पाद और सामग्रियां पॉलीमर और रासायनिक योजक से बनी होती हैं, जो प्लास्टिक से बंधे नहीं होते और उपयोग और निपटान के दौरान रिस सकते हैं। इसके अलावा अन्य विषैले या संभावित विषैले पदार्थ जैसे कि मोनोमर भी प्लास्टिक है, ये रिस सकते हैं। इनमें से कई प्लास्टिक रसायन के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में चलते हैं। यह जैव आधारित प्लास्टिक के लिए भी सच है, जो जीवाश्म ईंधन आधारित प्लास्टिक जितने ही विषैले हो सकते हैं। प्लास्टिक के जीवन चक्र के दौरान निकलने वाले कई रसायन खतरनाक होते हैं और मानव स्वास्थ्य और प्लास्टिक के लिए खतरा पैदा करते हैं। साक्ष्य बताते हैं कि प्लास्टिक से निकलने वाले खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से पहले ही गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरण समस्याएं सामने आ रही हैं। कई सबसे बड़े और सबसे खतरनाक रसायन परिवार, जिनमें सभी भारी धातुएं, अग्निरोधक पदार्थ, थैलेट, बिस्फेनॉल, फ्लोरीन युक्त यौगिक शामिल हैं, जो सीधे तौर

और प्लास्टिक से जुड़े हैं। प्लास्टिक में कई प्रकार के यौगिक शामिल होते हैं, जिसमें निर्माण और उद्योग में उपयोग होने वाले कोटिंग और रेजिन से लेकर हमारे कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक वस्त्र और टायरों के पुनर्चक्रित रबड़ के दाने भी शामिल हैं, जो अंततः हमारे बच्चों के खेलने के मैदानों में पाए जाते हैं। हम इन पदार्थों को प्रतिदिन निगलते हैं या सांस के माध्यम से ग्रहण करते हैं। प्लास्टिक की खाद्य पैकेजिंग में थैलेट और बिस्फेनॉल जैसे विषैले रसायन मौजूद होते हैं। प्लास्टिक में मौजूद ये और कई अन्य रसायनों के साथ मिलकर हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। आप जान भी नहीं पाते कि हम सांस के साथ ही कितना प्लास्टिक अपने अंदर ले लेते होंगे, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जब प्लास्टिक की वस्तुएं टूटती हैं तो वे माइक्रोप्लास्टिक छोड़ती हैं, जो 5 mm से कम व्यास के छोटे टुकड़े होते हैं, और नैनोप्लास्टिक नामक इससे भी छोटे कण होते हैं। तो आज सूक्ष्म प्लास्टिक हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त हो चुका है, हमारे सांसों से लेकर हमारे भोजन तक। ये पर्यावरण और मानव शरीर दोनों में मौजूद है। बोतल बंद पानी, समुद्री भोजन, घरेलू धूल में भी सूक्ष्म प्लास्टिक पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये मानव अंगों और अजन्मे शिशुओं की गर्भनाल में भी पाए जाते हैं। ये निष्कर्ष और आंकड़े चिंताजनक हैं। नमक और शहद से लेकर सेब, खीरे, आलू तक हर चीज़ में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। बोतल बंद पानी के 1 लीटर में लगभग 2.5 लाख नैनोप्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। एक व्यक्ति औसतन प्रति सप्ताह 5 ग्राम तक प्लास्टिक खा जाता है। तो यह सब चीज़ें सुनने में आपको बहुत ही भारी लग रही होगी कि यार सही में ऐसा होता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे स्वास्थ्य पर कब इसका खतरा मंडराने लगता है और हम छोटी छोटी गलतियां करके इन्हें अपने अंदर इनहेल करते रहते हैं। धनी देश पुनर्चक्रण के बहाने विकासशील देशों को प्लास्टिक कचरा निर्यात कर रहे हैं। उत्पादित प्लास्टिक का अधिकांश भाग एक बार उपयोग होने वाला है और पुनर्चक्रण के लिहाज से इसका मूल्य नगण्य है। विकसित देशों में प्लास्टिक कचरा, जिसमें पुनर्चक्रण योग्य मानी जाने वाली सामग्री भी शामिल है। खबरों के मुताबिक अगर हम पता करें तो अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ के करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, जहां इसका बड़ा हिस्सा लैंडफिल में डाला जाता है, जलाया जाता है, पर्यावरण में बिखेर दिया जाता है। और अधिकांश विकासशील देशों के पास प्लास्टिक के इस भारी मात्रा में प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं हैं। जब कचरे को जलाया जाता है तो उससे निकलने वाले जहरीले धुएं से आसपास के समुदायों में सांस संबंधी समस्याएं और अन्य बीमारियां फैलती हैं। तो यह बीमारियां जो है, सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा, त्वचा संबंधी समस्याएं, विभिन्न प्रकार के कैंसर और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से सबसे अधिक नुकसान होता है। साथियों, हम अपनी चर्चा आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

कहीं रंगी आंचल आहा, कहीं होठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आँख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाह।

जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।

वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।

0: समय प्रबंधन का मतलब है का।
1: साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म बादशाह का ये गाना अभिजीत की आवाज़ में। साथियों, हम बात कर रहे थे आपसे प्लास्टिक को किस तरीके से अपने जीवन से निकालना है, किस तरीके से वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको कुछ समझ आई होगी और आप जितना हो सके उतना अपने लाइफ से इस प्लास्टिक को नो कहें, यानी कि प्लास्टिक को कहें ना। साथियों, मैं बात करना चाहूँगी आपसे समय प्रबंधन की। समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट का अर्थ है अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना, ताकि कम समय और ऊर्जा में अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सके। यह लक्ष्य निर्धारण, प्राथमिकताओं की पहचान और कार्यों को सही समय पर पूरा करने की कला है। इसके लिए सुबह जल्दी उठना, कार्यों की सूची बनाना, एकाग्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिकता आपकी तय होनी चाहिए कि आपको किस काम को प्राथमिकता देनी है, किस काम की आपकी लाइफ में पहले ज़रूरत है वो काम आप पहले कीजिए। और जो काम हो सकता है कि वो आज नहीं करके कल कर लोगे तो चल जाएगा, आप उस काम को टाल सकते हो, परंतु जो आज करना है वो आज ही करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, दिन की शुरुआत में या रात में अपने कार्यों की सूची बनानी होगी कि हाँ, ये कल कल काम मुझे करना है और इस तरीके से मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ में हौच पौच होगी और आपके हो सकता है बनते काम बिगड़ भी जाए। कैलेंडर में हर काम के लिए एक निश्चित समय स्लॉट बुक होता है, आप उसमें भी अपना ये सारा रूटीन लिख सकते हैं। एक बार में एक ही काम करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जैसे किचन भी संभाल रहे हैं, ठीक है, और बच्चों की पढ़ाई भी देख रहे हैं, घर को भी देख रहे हैं, बाहर का भी देख रहे हैं, तो एक साथ सारे काम मैनेज नहीं हो पाएंगे। ना तो आपके बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी, ना आप खाना अच्छे से बना पाएंगे, ना आप सोशल लाइफ अच्छे से अटेंड करेंगे, और ना ही आप दूसरे काम जो आप करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। तो इसलिए एक बार में एक ही काम करें, जिससे कि आपका सब कुछ सही चलता रहेगा। कम समय में अधिक काम करने की आदत डालें, तनाव में कमी करें, यानी कि कार्यों को समय पर पूरा करने से मानसिक शांति मिलती है, आप सभी जानते हैं। अगर आप कार्य को टाइम पर पूरा कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। कार्य और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। कैरियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए सबसे आवश्यक है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, समय प्रबंधन कर लिया, तो आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुबह जल्दी उठने से न केवल स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि दिन के महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे हो जाते हैं और बाकी का दिन बोनस जैसे लगने लगता है। तो आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, जिससे कि आपके बहुत सारे काम आराम से हो जाएंगे। और आप जो ये चीज़ सोचते कि यार ये कैसे होगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको, आराम से सब स्मूथली काम होता रहेगा और आपको पीछे का ऐसा टाइम मिलेगा कि वो सिर्फ आपको अपने लिए जीना है, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो साथियों, मैं अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखूंगी, ले चलती हूँ आपको संगीत की दुनिया में और फिर आके आपसे वापस मिलती हूँ इसी समय प्रबंधन को लेकर।

0: इस तरह तू समाने लगा,
1: रग रग में इस तरह तू समाने लगी,
0: जैसे मुझको मुझसे चुराने लगा,
1: जैसे मुझको

साथियों, यह बात बिल्कुल सही है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। आपने ये चीज़ सुनी तो होगी, परंतु इस बात पे कितना गौर फरमाया है। जीवन के हर पहलू में सफल होने के लिए व्यक्ति को समय का महत्व समझना ही चाहिए। समय बर्बाद करने वाले ही अपनी पहचान बनाने में असफल होते हैं। हम बात कर रहे थे आपसे समय प्रबंधन की, तो वही मैं आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रही हूँ कि समय प्रबंधन से तात्पर्य है समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने से, ताकि सही समय सही गतिविधि के लिए आवंटित किया जा सके। प्रभावी समय प्रबंधन व्यक्तियों को गतिविधियों के महत्व के अनुसार विशिष्ट समय स्लॉट आवंटित करने की अनुमति देता है। समय प्रबंधन का तात्पर्य समय का सर्वोत्तम उपयोग करना है, क्योंकि समय हमेशा सीमित होता है। खुद से पूछें कि कौन सी गतिविधि अधिक महत्वपूर्ण है और उसके लिए कितना समय आवंटित किया जाना चाहिए। यह जाने कि कौन सा काम पहले किया जाना चाहिए, कौन सा काम थोड़ा बाद में किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना ही टाइम मैनेजमेंट है। अपने दिन की योजना बना पहले से ही बना लें। एक कार्य सूची कार्य योजना तैयार करें। एक दिन में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें। प्रत्येक कार्य के लिए समय को डिवाइड कर लें। किसी संगठन में बिना लक्ष्य और उद्देश्य के काम करना उस स्थिति के समान होगा जब जहाज का कप्तान समुद्र में रास्ता भटक जाए। जी हाँ, आप भी भटक जाएंगे अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करें, सुनिश्चित करें कि वे यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य है या नहीं। अपने लिए समय सीमा निर्धारित करें। समय सीमा से पहले कार्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। हर बार अपने वरिष्ठों के कहने का इंतजार न करें, काम की जिम्मेदारी लेना सीखें। समय सीमा निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका आप खुद हैं। खुद से पूछें कि किसी विशेष कार्य के लिए कितना समय कितने दिन चाहिए। कार्यस्थल पर ना कहना सीखें। हर काम खुद पर ना लें कि हाँ ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, और उसके बाद जब नहीं हो पाएगा तो आप जो अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते हैं, आप अपना जो ओहदा लेना चाहते हैं, वो लेने की बजाय आपका ओहदा गिर जाएगा। और अगर आप वो काम करना बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ करेंगे तो आपको खुद को स्ट्रेस होगा। तो ऐसा कोई काम स्वीकार न करें जो आपके लिए मुश्किल हो। कर्मचारियों की रुचि और विशेषज्ञता के अनुसार भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए, ताकि वे समय सीमा के भीतर काम पूरा कर ले। सही समय पर सही काम करने की आदत डालें। गलत समय पर किया गया काम किसी का नहीं होता। 1 घंटे में हो सकने वाले काम पर पूरा दिन बर्बाद ना करें। साथ ही अपने निजी कॉल करने या फेसबुक या ट्विटर पर अपडेट देखने के लिए कुछ समय निकालें। आखिर इंसान मशीन तो नहीं है, तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, फिर उसके बाद काम करें, फिर थोड़ा सा टाइम अपने लिए, फिर उसके बाद काम। तो उससे आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे और आपको काम करने की एक कहते हैं नई ऊर्जा मिलेगी। तो इसी के साथ अगर आप काम करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप एक बेहतर तरीके से काम कर पाए। साथियों, मैं आपके साथ ऐसे ही बातचीत करती रहूंगी।

Happy Friday!

लेकिन हारा क्यों मन का है तू तन रे।

साथियों, आज का दिन यानी कि सोमवार का दिन हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स, आपकी और हमारे नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी डीआरडीओ का तारा ग्लाइड बम परीक्षण। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी तारा ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। यह हथियार लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत करेगा। बीआरओ का 66वां स्थापना दिवस। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 7 मई 2026 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। बीआरओ देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। नीट यूजी 2026 की पेपर लीक पर कई राज्यों ने आशंका जताई है लीक होने की। राज्यों में एसओजी और अन्य जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। इससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। पिक्सेल को अमेरिकी कॉन्ट्रैक्ट मिलना। भारतीय स्पेस टेक कंपनी पिक्सेल को अमेरिका की नेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफिस से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कंपनी सैटेलाइट इमेजिंग और हाइपर स्पेक्ट्रल तकनीक पर काम कर रही है। महाराष्ट्र एसएससी 2026 का परिणाम घोषित हो चुका है और इसमें 92.09% इसका रिजल्ट रहा है और लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। यूपीआई लेन देन में नया रिकॉर्ड बना है। भारत में डिजिटल भुगतान लगातार बढ़ रहा है। मई 2026 में यूपीआई ट्रांजेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना है, जिससे भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 2026 में सामान्य से बेहतर मानसून की संभावना जताई है। इससे किसानों और कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। आईपीएल 2026 में युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके भारतीयों के मन में उत्साह पैदा कर दिया, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम को भविष्य के नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल सकते हैं। जीजीएसआईपीयू विश्वविद्यालय ने 2026 सत्र के लिए 7 नए हेल्थ केयर और पैरामेडिकल कोर्स शुरू किए हैं, जिससे छात्रों को चिकित्सा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। शिक्षा गुणवत्ता की रिपोर्ट में पंजाब आगे चल रही है। एनआईटीआई आयोग की नई शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में स्कूल शिक्षा सीखने के स्तर और सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया है। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

साथियों, हम आपसे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी आज के अंधाधुंध फैशन के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अभी जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ फैशन के पीछे भाग रही है। उसका फैशन के पीछे भागने का एक ही मकसद है कि किस तरीके से हम अपने आप को आगे बताएं, किस तरीके से उनके लिए लाइफ में हर चीज फैशन के पीछे भागना आज के समय में एक आम बात हो गई है। और जैसा कि आपने कहा, इसके पीछे का मूल उद्देश्य अक्सर खुद को दूसरों से आगे अपडेट दिखाना होता है। यह केवल कपड़े पहनने तक सीमित

नहीं है बल्कि एक सामाजिक पहचान बनाने का जरिया बन गया है। यहाँ फैशन के पीछे भागने के बहुत से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं, जैसे आत्मविश्वास और पहचान। स्टाइलिश कपड़े पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग खुद को भीड़ से अलग महसूस करते हैं, तो उस वजह से लोग क्या चाह रहे हैं कि वो आज की दौड़ में शामिल हो जाए, उस फैशन को अपनाएं, और इस चक्कर में वो अपनी संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं। नए ट्रेंड्स का पालन करना अक्सर उच्च सामाजिक स्थिति या अपडेट होने का संकेत माना जाता है। लोग अपने कपड़ों के जरिए, अपने फैशन के जरिए अपनी बात कहे बिना ही अपनी पर्सनैलिटी और विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहते हैं। नया फैशन या ट्रेंड अपनाने से दिमाग में डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो खुशी और उपलब्धि का एहसास कराता है। जो लोग फैशन के मामले में पीछे रह जाते हैं, वो अपने आप को ऐसा माने रखते हैं कि नहीं, हम इनके लायक नहीं हैं या हम इनके साथ उठ बैठ नहीं सकते। यह युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। फैशन मानव जीवन को बेहतर बनाता है क्योंकि आपको सुरुचिपूर्ण ढंग से जीवन जीने की कला सिखाता है, साथ ही साथ आपके अंतरात्मा में स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान करता है, आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है और एक प्रकार से मनोरंजन के रूप में भी कार्य करता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा उनके पीछे भागे, उस चक्कर में अपने सब चीजों को गौण समझें। वस्त्र, जूते, सहायक उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषणों के निर्माण और उसके संयोजन से बने परिधानों का आप उपयोग कर सकते हैं, परंतु उतना ही करें जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है। आप अंधाधुंध रूप से खर्चा न करें, अपनी इनकम को कुछ बचा के रखें। अगर इस फैशन के चक्कर में आप पड़ गए तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप सब तभी समझ पाएंगे जब आपको इसके, जो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स पता चले। आज की युवा पीढ़ी में फैशन की महत्ता ही बढ़ती जा रही है। फैशन ने अपना स्वतंत्र और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। यह एक नई परंपरा की उत्पत्ति का कारण बना है। नए कपड़े, नए स्टाइल, नए फैशन ट्रेंड्स, तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति ने लोगों को अपनी पहचान बनाने का एक नया तरीका सिखाया है। फैशन का रिप्लेसमेंट सिर्फ अच्छे जूते और खूबसूरती ही नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की व्यक्तिगतता और को भी प्रदर्शित करता है। लोग अपने, कह सकते हैं, आउटफिट से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सबको चाहते हैं कि हम सबकी मुख्य बिंदु बन सकें, हम उनका आधार बन सकें। फैशन ने सिर्फ खुद को बनाए रखने का ही नहीं, बल्कि एक पर्सनैलिटी को मेंटेन करने का भी सहारा दिया है। आपकी पोशाक, आपकी पहचान, आपकी व्यक्तिगत स्टाइल को पसंद करती है, यह आपको खुद पे गर्व महसूस करवाती है। मैं ये नहीं कहती कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनो और कुछ ऐसे सौंदर्य प्रसाधन यूज ना करो या नए जूते, नए तरीके से रहना ये आप नहीं करो, परंतु उतना ही करो जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध फैशन के चक्कर में आप उसके साथ दौड़े चले जाओ। आपको फैशन का प्रभाव सिर्फ वस्त्रों तक ही, इन सब तक ही सीमित नहीं रखना। आपको दुनिया के साथ चलना, यानी कि जो आज की दुनिया हर चीज़ में आगे चल रही है, टेक्नोलॉजी में और AI में, इन सब चीज़ों में भी आपको अपने आप को अपडेट रखना है। अगर आप इस तरीके से अपने आप को अपडेट करते हैं तो आप भीड़ से एक अलग लगते हैं। कपड़े, जूते, नए गैजेट्स सब सबके पास हो जाएंगे, सब लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे, परंतु दिमाग, यह इस तरीके का दिमाग अगर आप यूज करते हैं तो आप अपने आप से भीड़ से अलग होंगे। और यह सिर्फ कपड़े, जूते और ये जो गैजेट्स हैं, ये सिर्फ आपकी बाहरी सुंदरता है, परंतु अंदर की सुंदरता, आपका व्यवहार, आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, आप दूसरों के लिए कितना रेस्पेक्ट करते हैं, कितना सम्मान करते हैं दूसरों का, ये सब चीजें आपकी, कह सकते हैं, व्यक्तित्व को निखारता है और इसी से आप उभर के आ सकते हैं, अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज के इस फैशन के दौर में इतना भी आगे ना बढ़े कि आप अपने आप को ही भूल जाएं। बस उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज शाम 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या और रात्रि के 9 बजे समय रहेगा न्यूज़ @9 का, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

शाम के 6:30 पर आप सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को। 6:40 पर समय रहेगा जिले की चिट्ठी का और 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को। इन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

शाम के 6:15 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे भजनों के कार्यक्रम वंदना को। शाम के 7 समय रहेगा ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम ग्राम जगत का। शाम के 7:30 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत को।

शाम के 8 बजे हमारे श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम को एक बार फिर से आप सुन सकेंगे रात्रि के 9:15 पर और रात्रि के 10:30 पर। शाम के 8:30 पर समय रहेगा गजलों के कार्यक्रम सुगम संगीत का। नौ बजकर 30 मिनट पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत को।

रात्रि के 10 बजे समय रहेगा कार्यक्रम नाटक का। और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:05 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस गान।

0: ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान, एपिसोड नंबर 63।
1: एपिसोड 63।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उस

उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं, किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:15 हुए हैं। समय हुआ है भजनों के कार्यक्रम वंदना का। आइए आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा की आवाज में ये भजन।

स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।

0: हंसी जग रोए।
1: शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं,

अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज कौन है? रंगरेज है गुरु। गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। सोमनाथ लोगों को याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, जो हमारी अजय सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तनोट माता, पुष्कर, खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ जैसे आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है, उस विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली के मुंडका बरक्कल वाला टोल प्लाजा पर इस बैरियर रहित तकनीक की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस उन्नत प्रणाली से टोल प्लाजा पर लगने वाला समय कम होगा और ईंधन की बचत होगी तथा प्रदूषण में काफी कमी आएगी। नई तकनीक के तहत वाहन चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टोल कॉरिडोर से गुजर सकेंगे और टोल का भुगतान स्वचालित रूप से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सालाना लगभग 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। श्री यादव आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने बताया कि अगले महीने भारत में पहली और दूसरी तारीख को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों के भीतर देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
3: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का यह अवसर प्राप्त।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल का भी विशेष प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे

0: हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वे आज जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विज्ञान क्लबों से जुड़े छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। इससे पहले राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान और तकनीक का उपयोग समृद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने संस्थान से अनाज और सब्जियों में पेस्टिसाइड तथा रसायनों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील को राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। श्री बैरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान प्रधानमंत्री ने हमेशा ऐसे दूरदर्शी निर्णय लिए हैं जिनसे देश सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक एकजुट होकर प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करें।
1: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो, तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए, गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताइए। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से शुरू हुई स्वगणना में पिछले 10 दिन में 6.5 लाख से अधिक परिवारों ने भाग लिया है। इन परिवारों ने इस डिजिटल प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। स्वगणना के मामले में जयपुर जिला अव्वल है। 50,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना पूरी की है। सीकर जिला 32,000 परिवारों की स्वगणना के साथ दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि स्वगणना की प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह काम 14 जून तक चलेगा। उधर बालोतरा जिले में 100% स्वगणना पूरी करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को आज जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। भीलवाड़ा के रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए रीको ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 1500 से लेकर 36,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार के साथ MOU करने वाले निवेशक रीको के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगामी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रीको ने इस पार्क में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 221 करोड़ रुपए विकसित किए हैं। राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के कई हिस्सों में आज लू से जनजीवन प्रभावित रहा। कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रातें भी इन दिनों तप रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फलोदी में तापमान 46.8 तथा जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले 4-5 दिन बना रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में इस दौरान लू का दौर जारी रहने की संभावना है। उधर अगले 48 घंटों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में कहीं कहीं तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा मार्ग पर आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वंडर चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए इस हादसे में इन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

0: ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। बालोतरा रिफाइनरी में जुलाई महीने से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से यूनिट की कमीशनिंग का काम शुरू हो जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे, किंतु उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले यूनिट में आग लगने की घटना के बाद ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रिफाइनरी से जिले की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। इससे बालोतरा प्रदेश का तेजी से आगे बढ़ता जिला बन चुका है। तेजी से हो रहे विकास की कड़ी में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, पचपदरा बालोतरा में लग्जरी होटल्स और कई नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं। साथ ही रेलवे की ओर से बालोतरा से रिफाइनरी तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम किया जा रहा है। वहीं कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी बालोतरा बाड़मेर तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ रीको ने रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट के उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की है। बोरावास कलावा में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते हुए पहले चरण में भूखंडों की नीलामी भी की जा चुकी है। वहीं ये स्थान पेट्रोकेमिकल्स हब बनने की ओर तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बालोतरा रिफाइनरी क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें स्थानीय उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और रीको के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना के शुरू होने के बाद बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं बनी हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। बैठक के दौरान राजस्थान पेट्रो जोन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि रिफाइनरी के पास बोरावास कालावा, सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, मालियों की ढाणी, थोब और जेरला क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राम रथ अभियान के जरिए जिले के गांवों ढाणियों के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 27 अप्रैल से शुरू हुआ ये अभियान 15 मई तक चलेगा। ग्राम रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 13 विभागों की सरकारी योजनाओं, खासतौर पर कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, राजस्व, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। रथ पर LED स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हर रथ में एक सुझाव पेटिका है। इसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन तक सीधे पहुंचा रही हैं। रथ में पहली बार कलाकार भी शामिल किए गए हैं, जो रथ के साथ गांव-गांव जाकर लोक गीतों और नाटकों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। जिले की सिवाना, पचपदरा और बायतू विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में ये रथ पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपाल भी आयोजित हो रही है, जिसमें स्थानीय विधायक, जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचकर आमजन की परिवेदनाएं सुन रही हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। श्री बागड़े ने आसोतरा में ब्रह्मधाम में पूजा अर्चना की और गादीपति तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मवड़ी के ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल पहुंचे। उन्होंने गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने सदैव हमारी सभ्यता और संस्कारों का संरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में ज्ञान का अथाह सागर समाया हुआ है और भारत ने अपने इसी ज्ञान और दर्शन के बल पर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है। जिले में 4 मई से 10 मई तक अग्निशमन सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज रखी गई है। अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियों के साथ आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

0: गया। वहीं बालोतरा जिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसके साथ ही बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर ने आस्था दिव्यता और देश श्री आत्मारी निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में आए हाईवे माथे बिना रुकिया गाड़िया रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर बनायो चावेला। और प्रदेश रा आतुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और जोधपुर रा कई हल्का माए जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। गुजरात रा सोमनाथ मंदिर ने उजू बनावन रा 75 साल पूरा भेवन रा मौके आखा देश माए आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाई चियो। ई मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर माए पूजा अर्चना कीनी। गुजरात माए राखी ज्या सोमनाथ अमृत महोत्सव माए श्री मोदी कहो के सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी है। वह कहो के सोमनाथ लोगा ना याद दिलावे है के जणाऊ जुड़ियो रहवण री सूरत माए कोई देश लंबा भगत नाई मजबूती चाल सके है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा झारखंड महादेव मंदिर माए राखी चियो। इन माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के 75 साल पहली सरदार वल्लभ भाई पटेल रा संकल्प सोमनाथ मंदिर ने ओजू सुधारी चियो जो माणी बेहतरीन सांस्कृतिक भावना रो दर्शाव करे है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री विकास और विरासत री सोच री सराहना करता थका कहो के देश भर माए अयोध्या काशी और उज्जैन सरीखी धार्मिक ठोड़ा नो कायाकल्प करियो चाहियो है। और राज्य सरकार ही तनोट माता पुष्कर खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ सरीखा आस्थारा केंद्रा ने विकसित करण सारू लगातार काम कर रही है।
3: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहो है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम सागर देश माए हाईवे मैनेजमेंट रो नुओ दौर शुरू कियो है। वे आज नई दिल्ली रा मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा मत है बिना बैरियर वाली तकनीक री शुरुआत कीनी। श्री गडकरी कहो के ई तकनीक गाड़िया टोल कॉरिडोर 100 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार निकल सकेला और टोल रो चुकारो आपू आप पहचावेला। वे कहो के ई व्यवस्थाओं हर साल करीब 285 करोड़ रुपए रो तेल बचेला। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि बाघ शेर और चीता सरीखा मोटा जिनावरा ने बचावन सारू कारोबारियां का न्यू रकम देवनो घणो जरूरी है। वह आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII रासालाना व्यापार शिखर सम्मेलन में बोल रहा है। श्री यादव कहो कि पहलो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन 1 और 2 जून

0: नई दिल्ली में राख्यो चावेला। वे बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाला राजरा 10 साल में देश में टाइगर रिजर्व री तादाद में बढ़ोतरी हुई है।
1: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का यह अवसर था।
0: केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी रोजगार और आजीविका मिशन कानून लागू भेवन री अधिसूचना जारी कर दीनी है। ई पाछे ओ कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू भेजावेला। इन तेत गावाई हलका में साल में 125 दिन री मजूरी री गारंटी दी जावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब ई मद में चालू माली साल में 95,692 करोड़ रुपया राखी चाह है। इस आगे महिला मजूरान की भागीदारी बढ़ावन सारू कमठाणा माथे बच्चा की देखभाल रा खास प्रावधान करी चाह है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल ने बढ़ावो देवन सारू महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त रा नाम परा ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करियो चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर में राखी जिया राज्य स्तर रा जलसा माए ओ ऐलान कीनो। वे कहो कि जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर खोलियो जावेला। कार्यक्रम रे दौरान श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश भर रा विज्ञान क्लबों जुड़िया विद्यार्थियों सागे बातचीत कीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ही विज्ञान और तकनीक ने समृद्ध और स्वस्थ जीवन सारू काम लेवन बाबत कहो है। वे आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर रा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी का नींव राखी जा कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री बागड़े इन संस्थान अनाज और तरकारियां ने बचावन सारू काम ली जावन वाली कीड़ा मारन री दवाइयां और रसायन री जांच सारू नुवा उपकरण विकसित करन बाबत कहो। वे कहो कि मौजूदा दौर में खान पीन री चीजा में जहरीली चीजा री मौजूदगी री जांच घनी मोटी जरूरत है। ई मौके राज्यपाल राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 री स्मारिका और पोस्टर रो विमोचन कीनो। चालू माली साल 2026-27 माए देश री माली व्यवस्था माए 6.6% री बढ़ोतरी रा आसार है। भारतीय स्टेट बैंक का न्यू आज जारी रिपोर्ट रे मुजब लाडला माली साल री चौथी तिमाही माए असली सकल घरेलू उत्पाद GDP माए बढ़ोतरी रो अनुमान करीब 7.2% लकाइचियो हो। इन बीच उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री साधना ने बुद्धियों काम लेवन और बचत री अरज ने देश ने माली तौर मजबूत बनावन री दिशा माए मोटो जतन बतायो है। श्री बैरवा कहो कि दुनिया रा मौजूदा हालात न ध्यान रखता थका विदेशी मुद्रा भंडार न बचावन सारू जनता ने प्रधानमंत्री री अरज माननी चाहिए।
2: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवे नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 रातेत 1 मई चल रहा जनगणना रा पहला दौर रातेत करी जी स्वगणना माए लाडला 10 दिन माए 6.5 लाख बत्ता परिवार शामिल भैर डिजिटल प्रक्रिया पूरी कर लीनी है। स्वगणना रा मामला माए अव्वल जयपुर जिला माए 50,000 बत्ता परिवार स्वगणना पूरी कर लीनी है। सीकर जिलो 32,000 परिवारों ने स्वगणना सागे दूजा नंबर माथे है। ध्यान योग है कि स्वगणना रो काम 15 मई ताई चलेला। 16 मई 14 जून ताई प्रगणक घर घर जार मकाना री गिनती करेला। इबीच बालोतरा जिला में सगला घर में स्वगणना पूरी करावन वाला प्रगणका

ग्राम जगत सुनाड़े सभी भाइयों ना मनोज भाई रा ग्रान ग्रान राम राम। तो देखो भाई और कार्यक्रम रो बखत हो क्यों है आज को है 11 मई दिन जी को है। धीरे धीरे समय में परिवर्तन होता जा रहा है और वो साथ साथ जी को है ग्रीष्म ऋतु है वो भी आप धीरे धीरे चरम से पहुंच रही है। ज़्यादातर आप अगर बात कराओ तो मई और जून महीनों

शुरू से आप देखे हो कि मतलब जो गर्मी है प्रचंड रूप से बढ़िया करे, तापमान भी जो है 44 या 45 डिग्री से ऊंचे जावन की आशंका रहा करे। तो ये तापमान देखते हुए जरूरी जो को चीज़ों है, आप जो को खान पान है, आप पहनाव है, या आप जो को आवागमन है, अगर वो अत्यधिक आवश्यक हो जरूरत रहे हिसाब से करो, ताकि ग्रीष्म ऋतु रहे ये जो को तेज लू है आप असर नहीं हो, आप उसका बीमार नहीं पड़ो। आप देखा करो कि विशेषकर दोपहर में जो को है, दोपहर 12 या 1 बजे बाद शाम में 5 से 6 बजे तक जो को है गर्मी का असर बहुत ज़्यादा रहा करे। तो कई अड़ा भाई लोग हैं जो को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी तरफ जो को है काम के वास्ते पलायन करिया करे। तो अगर ज़्यादा सुविधाजनक हो और जरूरत अनुसार अगर वो रोजमर्रा रो काम हो, तो कोई तरह की जो को आप कोई ना आपातकालीन स्थिति ना दूर करके उसके अलावा अगर आप अगर रोजमर्रा रो काम है तो अपन वो जो को है सुबह जल्दी शुरू कर देना चाहिए। आप जो को है ठंडी टाइम रह जाए के कई वाहन, क्योंकि कई जो ग्रामीण भाई है वो दुपहिया वाहन में ही जाया करे, तो वो जल्दी से जल्दी तो दुपहिया वाहन में जाए के आप लोग काम जो है जल्दी से जल्दी निपटा दे, ताकि आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं हो। यह चीज़ ध्यान में रखते आप कसर देखो, आज विषय है कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी, पूरा कई अलग अलग तरीका है, अलग अलग जो तकनीकियां हैं। सबसे पहले अगर बात करो तो उन्नत बीज और जैव प्रौद्योगिकी, उच्च उपज देने वाली किस्मों, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों और तकनीक और जरिए आप रोग और कीट प्रतिरोधक मत आप क्षमता पा सकें। सटीक खेती जो आप बात करो, नए आधुनिक युग में GPS है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, पूरे जरिए आप फसल निगरानी करना, ताकि उर्वरक और पानी का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही हो सके। ये कड़ी में अगर आप बात करो आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर पद्धति, जिसके से पानी कम से कम बर्बादी हो और पौधों ना जो को है सीधे जड़ों तक पानी मिले। मिट्टी और फसल सेंसर, आज आधुनिक युग में मिट्टी का सेंसर उपयोग करके पूरी नमी, तापमान और पोषक तत्वों आप सही मात्रा में पतो लगा सको। और साथ साथ जैविक और स्वच्छ उर्वरक के रूप में अगर बात करो तो मृदा स्वास्थ्य ना बेहतर बनाने से बायो फर्टिलाइजर और संतुलित रसायन और उपयोग करो। वैज्ञानिक तकनीकी का कई लाभ है, कम क्षेत्र में अधिक फसल उत्पादन, पानी खाद और कीटनाशक और सही प्रबंधन, अधिक पौष्टिक और लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाली फसलों का उपयोग। हमें आपस में बड़े आसान लोग और चर्चा लक्ष्य जारी।

नदी खड़ू कतनी सूखा सरोवर कुल भरे राम बना रघुवीर।

ஊராடி ஆயிரத்த சோமனரி மனோ அடக்கி பியர.

तो देखो भाई, आप और सुनिए, बढ़िया राजस्थानी लोकगीत पणिहारी। आज 11 मई है। 11 मई देखो, जब भी आप कार्यक्रम कराया करें तो हर दिवस एक विशेष रूप में आप मनाया करें। 11 मई जो है भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रूप में मनाया जाए। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता और स्वदेशी हंस 3 विमान व त्रिशूल मिसाइल ने सफल परीक्षण याद में मनाया जाए। यह दिवस वैज्ञानिक प्रगति, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत के नए युग का जश्न मनाया करें। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रहा कई मुख्य बिंदु है। सबसे पहले अगर बात करो तो ऐतिहासिक महत्व है। 11 मई 1998 में राजस्थान में पोखरण में ऑपरेशन शक्ति री सफलता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित कियो। ये उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय वैज्ञानिकों इंजीनियर की उपलब्धि ने याद करना और युवाओं ने ये क्षेत्र में प्रेरित करना। ये आयोजन जो है भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष ये दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान वास्ते प्रदान किया जावे। 11 मई 1998 में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित विमान हंस 3 सफल उड़ान और त्रिशूल मिसाइल परीक्षण करियो। तो यह दिन भारतीय तकनीकी क्षमता ने पहचानना और देश ने आत्मनिर्भर बनाने वास्ते वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों ने बढ़ावा देने एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये वास्ते हर साल 11 महीना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनायो जावे। हमें आपस में सही बड़े राजस्थानी लोग की।

ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಆಗರೋ ಗಡ್ಡ ಜಬಿಕಾನೆ ಹಲೋ ಚುಣಾಯೋ ಭಾಟಿಯೋ ಶ್ರೇ ಜಿ ಶರ್ಮ.

तो देखो भाई, आप सुनिए बढ़िया राजस्थानी लोकगीत लोक संगीत जो है ये कार्यक्रम का हिस्सा रहा करे, ताकि यहाँ पर जो भी श्रोता है वो जानकारी और साथ साथ लोक संगीत और साथ मनोरंजन भी कर सके। तो भाई हमें हो कि समय ले सो था सुशी और कर सकना राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। और आज हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत में वायलिन वादन राग पट मंजरी विदुषी एंड राजन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 8 बजे हैं, समय हुआ है फिल्म संगीत का। तो लीजिए, आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत, और इसमें आप सुनिए ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।

0: बस आपके हम हो गए।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम था हम तुम पे मरते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत और हम आपको सुनवाते हैं पंकज उधास की गजलें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 8:45 होने वाले हैं और अब से कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद इवनिंग न्यूज, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया।

0: उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवराम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
6: टू द अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हिमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता N रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, turns West Asia conflict one of decade's biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, Central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, turning the West Asia conflict one of decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
7: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
6: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द गवर्नमेंट इज मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू इंश्योर दैट दिस सिचुएशन हैज अ मिनिमल पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री। The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
7: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दे। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
6: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebration. In a social media post after the visit to the temple, the Prime Minister said, Somnath temple stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. He said a thousand years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi added, the doors of the newly rebuilt Somnath temple opened in 1951 in the presence of the then president, Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country, and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the fifth meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster the country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. The government said the supply management has been good and the people need not panic or resort to overpurchase of fuel and other products. During the meeting, Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement Prime Minister Modi's 7-point appeal at the ground level. The meeting was attended by Union Ministers J.P. Nadda, Ashwini Vaishnaw, Hardeep Singh Puri, Kiran Rijiju, K. Ramohan Naidu, Sarbanand Sonowal and Dr. Jitendra Singh. Meanwhile, the centre today said the stock of fertilisers in the country is more than 51% for the Kharif season 2026. Additional Secretary at the Ministry of Chemicals and Fertilisers, Aparna Sharma, stated this while addressing the inter-ministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi today.
8: For the season of Kharif 2026, the stock is more than 51%. The fertilizer stock is comfortable and the MRP of major fertilizer remains very much the same. The domestic production and import of fertilizer after the crisis period has been 76.78 and the imports that have reached our shores is 19.94 LMT. So a total of 97 lakh metric ton of fertilizer has been added to the availability after the crisis situation.
6: Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the government is ensuring the supply of fuel to the consumers. She informed that over the past 3 days, 1 crore 14 lakh LPG cylinders have been delivered to households against the 1 crore 26 lakh bookings. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that India's food stock is abundant and there is no food shortage in the country. The minister said this while jointly launching the Science Excellence for Health through Agriculture Transformation Sehat Initiative alongside Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda in New Delhi. Mr. Chauhan said that the initiative will help in boosting the healthy lifestyle of the people. The centre has notified the implementation of the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act 2025, that is Viksit Bharat G. Ramji. The Act will be rolled out nationwide from 1st of July this year. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower the rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. More from our correspondent.
9: The Viksit Bharat Jiramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Jiramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. With Deependra Kumar, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at EIR News Alert. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. In Assam, preparations are in full swing for the swearing-in ceremony of BJP leader Hemanta Biswa Sarma as the Chief Minister for a second consecutive term tomorrow. The ceremony will be held in Guwahati. The swearing-in will mark the NDA's third consecutive term in Assam. Dr. Sarma today visited the venue to review the arrangements. Speaking to media, he said Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen will attend the ceremony. Several union ministers and chief ministers of BJP-ruled states are also expected to be present. In West Bengal, the new government began its work today. Chief Minister Shubhendu Adhikari chaired the first cabinet meeting and also held administrative and law and order reviews at the State Secretariat. Our correspondent has the details.
10: Departments have been distributed among the five ministers of the government of West Bengal today. They took oath on 9th May along with Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a major development, several central government schemes including Ayushman Bharat, Jal Jeevan Mission, Beti Bachao Beti Padhao have been given nod to be implemented in West Bengal. Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media within 45 days lands will be given to the Border Security Force for fencing along the Indo-Bangladesh border. The previous government under the TMC rule has not transferred the requisite land even after receiving funds from the central government. The new state government also informed no running welfare state government scheme will be stopped by the new government of West Bengal. Kollan Laha reporting from Kolkata.
6: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today recalled the achievements of 1998 Pokhran 2 nuclear test on National Technology Day. Addressing a program on the occasion, the minister highlighted that in the last one decade, India's defense production has gone up by 174 times to 1.54 lakh crores.
11: In 2014, we had just 350 to 400 startups. Today, we have more than 2 lakh. We stand number 3 in the world ecosystem of startups. In just one decade, our defense production has gone up by 174 times to 1.54 lakh crore. And our defense export has gone up 34 times in just one decade, up to 23,622 crore.
6: Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today said corporate funding is essential for habitat restoration, technology-driven monitoring, and community-based conservation of big cats. The minister was addressing a CII annual business summit in New Delhi.
12: Next June 1st and 2nd, India will be hosting the first World Summit of International Big Cat Alliance. IBCA is Prime Minister Shri Narendra Modi ji's initiative to save the 7 big cats of the world. Corporate funding is essential to support critical areas of big cat conservation such as habitat restoration, technology-driven monitoring and surveillance, community-based conservation, capacity building and conservation awareness. I urge you all to come forward to save the big cats because the big cat maintain ecological balance, protecting vast landscape, biodiversity and water resources.
6: Benchmark domestic equity indices fell around 1.5% today as a fresh flare-up in U.S. and Iran tensions led to a rise in crude oil prices and dampened investor sentiment. The BSE Sensex plunged 1,313 points to close at 76,015. The NSE Nifty lost 360 points to settle at 23,816. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast heat wave conditions over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan, and West Madhya Pradesh tomorrow. Meanwhile, heavy rainfall is likely to prevail over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal, and Sikkim during the next 2 days. In Delhi NCR, cloudy skies are expected over the national capital tomorrow. On to sports. In cricket, India continues to hold the number one position in the latest ICC men's ODI team rankings following the annual update released today. India's rating slipped by 1 point from 119 to 118. New Zealand is on the second position, gaining 2 points to move up to 113. Australia stayed at the third spot with an unchanged rating of 109. The biggest movement inside the top five came from South Africa, which climbed above Pakistan to move into the fourth place. And in IPL cricket, Punjab Kings were 180 for 2 in 11.3 overs against Delhi Capitals in Dharamsala when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on natural resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days' stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Jiranji Act from 1st of July. BJP leader Himanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. That is all in the news at 9. Good night.
13: Aadab, ye Akashwani hai. खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मग़रिबी एशिया के तनाज़े को इस दहाई के सबसे बड़े बुहरान में से एक करार दिया। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है क्योंकि मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन के लिए जखीरा मौजूद है। मरकज ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में एनडीए की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। महकमा मौसमियात ने कल गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में गर्म लहर की पेशगोई की है। और क्रिकेट में भारत ने मर्दों की एक रोजा क्रिकेट की दर्जाबंदी में अपना अव्वल मकाम बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाज़े को इस दहाई के सबसे बड़े बुहरान में से एक करार दिया। वज़ीर आज़म वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के इफ्तिताह के बाद एक इज्तिमे से खिताब कर रहे थे।
7: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। पश्चिम

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम था अकेले हम अकेले तुम। आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, सुखिंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम नाटक, जिसका शीर्षक है एक सफर छोटा सा, जिसके लेखक है मंडल दत्त, प्रस्तुत करता है गोकुल स्वामी और सहायक है अरविंद माथुर।

0: आशु, 2 साल यूं निकल गए जैसे 2 पल निकले हो। याद है आज से 2 साल पहले आज ही के दिन हम लोग यहीं इसी पार्क में मिले थे?
1: हाँ, अच्छी तरह याद है। तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर देख रहे थे जैसे कभी किसी लड़की को देखा ही ना हो।
0: लड़कियां तो बहुत देखी थी लेकिन तुम जैसी नहीं। और तुम भी तो अपनी सहेली से नजरें बचाकर मुझे बार बार देख रही थी।
1: हट, मैं कहां तुम्हें देख रही थी, तुम तो हमेशा
0: मैं वकील का बेटा जरूर हूँ पर आज तक बहस में मैं तुमसे नहीं जीत सका।
1: चलो हटो। अरे हाँ, तुमने अपने डैडी से अपनी शादी की बात की या नहीं?
0: मौका

0: ढूंढ रहा हूं। कभी अच्छे मूड में हूं तभी तो बात करूं ना। और वैसे भी इतनी जल्दी क्या है।
1: अच्छा जी, यूं क्यों नहीं कहते कि हिम्मत ही नहीं हो रही है जनाब की?
0: अच्छा अभी जाकर करता हूं।
1: अमर, तुम हर बात मजाक में टाल जाते हो, मेरी तो जान पे बनी है।
0: पर इसमें सीरियस होने की क्या बात है? शादी मुझे करनी है और तुम्हें से करनी है, हो जाएगी।
1: तुम नहीं जानते अमर, एक लड़की के लिए यू छुप छुप कर किसी लड़के से मिलना।
0: तुम कहाँ मिल रही हो? मिल तो मैं रहा हूं तुमसे।
1: ओफो, फिर वही मजाक। सच कहती हूँ अमर, अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम मेरे डैडी को नहीं जानते।
0: जानता तो नहीं हूं, पर तुम ही से सुना है कि वो एक कड़क पुलिस ऑफिसर है। लेकिन वो मुझे तुमसे शादी करने से नहीं रोक सकते। आशु, आशु मुझ पर भरोसा करो। अपने प्यार के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा।

0: अजी तुम्हारा लाडला अमर अभी तक घर नहीं आया है।
1: अरे बाबा नहीं आया है तो आ जाएगा, इसमें चिंता करने की क्या बात है, अब वो बच्चा तो है नहीं।
0: यही तो मैं कह रही हूँ कि वो अब बच्चा नहीं है। कभी तो मेरी बात पे ध्यान दिया करो।
1: क्या ध्यान दूँ? तुमने कभी सोचा है कि मैं कोर्ट से थका हारा आता हूँ और तुम हमेशा अमर की शिकायत लेकर बैठ जाती हो? आज तक ये नहीं कहा आप हाथ मुंह धोलो में कॉफी बनाकर लाती।
0: ये कोर्ट नहीं है, यहाँ आपकी कोई बहस नहीं चलेगी। आज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी।
1: अरे भाई मैं तो एक वकील हूँ, शायद किसी जज की भी अपनी पत्नी के सामने कोई बहस नहीं चलती। अच्छा बाबा बताओ।
0: आपका इकलौता लाडला अब शादी के लायक हो गया है, कोई अच्छी सी लड़की देखो और शादी करो।
1: अरे अभी वो शादी के लायक कहाँ हुआ है? लड़का शादी के लायक तो तब होता है जब वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए, कुछ कमाने लग जाए।
0: तो अपने बेटे को क्या कमी है, कोई अच्छा सा बिजनेस लगवा दो, कल अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा।
1: तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा बेटा आईएएस बनेगा, कितना होनहार है अपना अमर, बिजनेस लगवाकर उसे कोलू का बैल नहीं बनाना चाहता, फिर अभी उसकी उम्र ही क्या है।
0: आईएएस तो वो बनेगा तब बनेगा, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर बैठा तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
1: रमा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अपना बेटा कोई लड़की हो। अरे मेरा अमर उन लड़कों में से नहीं है, वो मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी नहीं बढ़ाता।
0: तो यही बता दो कि अभी उसके कदम किधर बढ़ रहे हैं।
1: अरे लाइब्रेरी में होगा, या हो सकता है कहीं अपने लेक्चरर के घर गया हो।
0: कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के ये तो मालूम करो कि किस लेक्चरर के घर जाता है, कहीं ऐसा न हो कि
1: कहीं वैसा न हो। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा अमर ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है, कहीं किसी पार्क में किसी लड़की के साथ बैठकर इश्क फरमा रहा है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता।
0: मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, वरना कल को दुनिया कहेगी कि माँ बाप अपने इकलौते बेटे को संभाल नहीं पाए, अपने लाड प्यार से बच्चे का भविष्य बिगाड़ दिया। पढ़ाई तो वो शादी के बाद भी कर सकता है।
1: ठीक है बाबा, जैसा तुम ठीक समझो करो।

0: अरे अरे आशा बेबी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, ऐसे ही बैठी हो। लड़के वाले तुम्हें देखने आते ही होंगे।
1: माँ, ये कैसी जिद है? मैंने तुम्हें हजार बार कहा है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
0: क्यों नहीं करोगी तुम ये शादी? हाँ, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि ये तुम कह रही हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैडी उन लोगों के सामने शर्मिंदा हो? क्या माँ बाप को अपनी औलाद पर इतना भी हक नहीं कि वो उसका भला बुरा सोच सके?
1: ये बात नहीं है मम्मी, तुम बात पक्की करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो सकती थी।
0: इसमें पूछने की क्या बात है? कौन माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करते? और फिर बात अभी पक्की कहाँ हुई है? वो लोग तो सिर्फ तुम्हें देखने आ रहे हैं।
1: देखने आ रहे हैं, मैं कोई नुमाइश की चीज हूं? मम्मी, एक तरफ तो तुम नारी मुक्ति आंदोलन की सभाएं करती हो और दूसरी तरफ खुद अपनी बेटी की आजादी का गला घोट रही हो।
0: आजादी? कैसी आजादी? क्या शादी नहीं करना आजादी है?
1: मैंने ऐसा कब कहा?
0: तो फिर तुम्हें इस शादी से इनकार क्यों है? आखिर मैं तेरी माँ हूं, तेरा बुरा तो सोचूंगी नहीं। और फिर अगर तुम्हें लड़का पसंद ना आए तो हम उन्हें बाद में मना करवा देंगे।
1: बाद में क्यों, आप अभी ही मना कर दीजिए। मुझे कोई लड़का नहीं देखना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती।
2: क्या हुआ? अभी तक हमारी लाडली तैयार नहीं हुई।
0: आपकी लाडली फरमा रही है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है।
2: क्यों आशा, क्या बात है?
1: डैडी, क्या मैं आप पे बोझ बन गई हूँ?
2: कोई बेटी अपने माँ बाप पे बोझ नहीं होती, फिर भी हर माँ बाप को उसकी शादी तो करनी ही पड़ती है।
1: पर डैडी, इतनी जल्दी क्या है?
2: बेटी, तुम लड़के को देख तो लो। भाई, शादी जब तुम चाहोगी तब होगी। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।

0: आशु, आशु तुम जानती हो उस दिन जब मम्मी ने मुझे ये कहा कि तुम्हें आज शादी के लिए लड़की देखने जाना है, तो मेरा सारा खून सूख गया। और उस पर डैडी की जिद, मैं तो ना हाँ कह सका और ना ना।
1: इसका मतलब तुम चुपचाप रवाना हो गए, वो कसमें वो वादे सब भूल गए। बड़ी हिम्मत के साथ कहते थे कि अपने प्यार के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा।
0: सुनो तो सही, आखिर मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, हरगिज नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। तो माँ ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहने लगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो कल मेरी लाश देखोगे।
1: और तुम आज्ञाकारी बेटी की तरह तैयार हो गए लड़की देखने के लिए।
0: नहीं, मैंने अपने डैडी के सामने एक शर्त रखी कि मैं आपकी बात रखने के लिए चल तो सकता हूँ, लेकिन उससे शादी हरगिज नहीं करूंगा। लेकिन तुम तो कहती थी ना कि अपनी जान दे दूंगी पर किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी।
1: मैं तो सिर्फ इसलिए तैयार हुई थी कि मम्मी ने कह दिया था कि बात अभी पक्की थोड़े ही की है, तुम चाहो तो मना कर देना। पर जब चाय की ट्रेले के कमरे में आई और सामने तुम्हें देखा तो बस ये समझ लो कि ट्रे हाथ से गिरी नहीं।
0: मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में इतना बड़ा इत्तेफाक भी हो सकता है।
1: और तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी मम्मी से कहा, जब आप लोगों ने बात चला ही दी है तो मैं आपकी इज्जत पे आज नहीं आने दूंगी, अब अगर शादी करूंगी तो इसी लड़के से। माँ समझने लगी जैसे मैंने उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो।
0: हाँ आशु, भगवान करे हर प्यार करने वालों की जिंदगी में ऐसा ही इत्तेफाक आए।
1: सच अमर, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अगर मैं अपने माँ बाप से ये कहती कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ तो घर में भूचाल आ जाता और वो ये शादी कभी नहीं होने देते।
0: पता नहीं आशु, क्यों कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनकी औलाद किसी से प्यार करे और उससे शादी।
1: बस अमर, अब तो बेसब्री से

उस दिन का इंतजार है जब तुम दुल्हा बनकर बारात लेकर मेरे घर आओगी और मैं दुल्हन बनी वरमाला लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी।

0: कल्पना, ओ कल्पना, अरे मैंने कहा सुनती हो, तो ना जाने कहां चली गई।
1: अरे क्या बात है, क्यों तूफान मचा रखा है घर में? कभी तो घर को घर समझ लिया करो। बोलो क्या हुआ?
0: ये पूछो क्या नहीं हुआ, कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। पिछले 2 महीनों में 3 आदमी आकर ये कह चुके हैं कि वो लड़का ठीक नहीं है।
1: कौन सा लड़का ठीक नहीं है?
0: अरे वो है ना।
1: वो कौन?
0: अरे वही जिससे अपनी आशा की बात पक्की की है।
1: कौन, अमर?
0: हाँ हाँ वही नालायक अमर।
1: क्यों, क्या हुआ उसे? अरे कुछ बताओ तो।
0: कि वो जनाब इश्क फरमाते हैं।
1: इश्क फरमाते किससे?
0: किससे क्या मतलब? अरे लड़की से। और किससे?
1: लड़की कौन? अरे अपनी आशा?
0: अरे नहीं बाबा नहीं, वो बात पक्की होने से पहले किसी लड़की के साथ पार्क में बुलचरे उड़ाते हुए देखे गए हैं।
1: आपको किसने कहा?
0: वो अपना वर्मा है ना, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है।
1: नहीं नहीं, वकील साहब का लड़का ऐसा हो ही नहीं सकता।
0: क्यों, क्यों नहीं हो सकता? अरे क्या सभी वकीलों के लड़के शरीफ होते हैं?
1: अरे नहीं नहीं, पर अमर की बात तो कुछ और है। वो तो,
0: इसका मतलब वर्मा की रिपोर्ट गलत है?
1: हो सकती है, अक्सर पुलिस वाले रिपोर्ट तो गलत ही लाते हैं।
0: नहीं, पुलिस के पास हमेशा सही रिपोर्ट रहती है।
1: लेकिन ये सब हुआ कैसे?
0: रिपोर्ट लाने वाला हमेशा की तरह लेट आया, पर उस बेचारे को कहां मालूम था कि हम इस लड़के को अपना दामाद बनाने वाले हैं। अरे ये उम्र ही ऐसी होती है।
1: फिर भी एक बार अमर से बात तो कर लो।
0: मैं इस किस्म के लड़कों को अच्छी तरह से जानता हूँ। कभी कोई चोर अपने मुंह से नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। मैं उसे नहीं, उसके बाप से एक बात करूंगा, उन्हें साफ साफ कह दूंगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है।
1: ये क्या कह रहे हैं आप? आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं? लेकिन क्यों?
0: मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इस तरह अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा।
1: आप तो खामखां बात बढ़ा रहे हैं, शादी होने के बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: क्या हाँ ठीक हो जाएगा? अरे इंसान एक बार फिसलता है तो फिसलता ही जाता है। जरा सोचो तो, अरे लड़का शादी से पहले ऐसा कर सकता है तो क्या वो शादी के बाद नहीं करेगा? एक अपनी आशा को देखो, अरे कभी सुना है उसके बारे में ऐसा वैसा?
1: वो तो अभी शादी ही नहीं करना चाहती। कैसे सुनते, आखिर मेरी बेटी मुझ पे जो गई है।
0: तुम्हारा मतलब है कि मैं?
1: आपके तो चर्चे आम थे, शादी से पहले घर वालों ने बहुत छुपाए थे, पर
0: इस बार ऐसा नहीं होगा।
1: वो तो मेरे पापा ने भी कहा था।
0: कुछ भी हो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा।
1: मुझे तो तभी शक हो गया था जब लड़के के माँ बाप ने दहेज के बारे में कोई बात ही नहीं की, वरना आज के जमाने में कौन सा बाप ऐसा है जो अपने बेटे पे खर्च की हुई पूंजी लड़की वालों से वसूल नहीं करना चाहता। पर अब क्या हो सकता है जी?
0: क्या नहीं हो सकता, चलो तुम मेरे साथ, अभी वकील साहब से साफ साफ बात कह देते हैं।
2: ये सब कैसे हुआ, अमर को बताती हूँ, कुछ करना होगा।

0: अरे आशु, क्या बात है? मुझे क्यों बुलाया?
1: इतनी देर लगा दी, तुम भी हद करते हो। 15 मिनट से तुम्हारा वेट कर रही हूँ।
0: अरे राजेश ने मुझे जैसे ही आके कहा, मैं आ गया। कहो क्या बात है? अभी तो कॉलेज से आते वक्त मिलकर गई थी।
1: लेकिन अब मिलना जुलना सब बंद।
0: क्यों, शादी कल ही हो रही है क्या?
1: नहीं जनाब, शादी हो ही नहीं रही, यही तो बताने आई हूँ।
0: अच्छा, अब तुम भी अच्छा मजाक कर लेती।

0: ओफो, समझते क्यों नहीं? मैं मजाक नहीं कर रही हूं, सीरियस हूं, एकदम सीरियस।
1: तो क्या तुम सीरियसली ये कह रही हो कि हमारी शादी नहीं हो रही?
0: हाँ, मैं जैसे ही घर पहुंची, मेरे मम्मी पापा आपस में यही बात कर रहे थे। पूरी
1: क्या बात?
0: बात तो सुनी नहीं, पर पापा कह रहे थे कुछ भी हो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा।
1: जैसे उनके बाप का राज है। और क्या कहा?
0: मम्मी पता नहीं क्या क्या दहेज के बारे में बोल रही थी।
1: लेकिन मेरे मम्मी डैडी ने तो दहेज की बात तक नहीं की।
0: इसीलिए तो मेरी मम्मी शक कर रही है कि कुछ गड़बड़ है।
1: क्या गड़बड़ है?
0: पता नहीं,
1: फिर क्या हुआ?
0: मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर गए हैं मना करने के लिए।
1: मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं।
0: अमर, ये भी तो हो सकता है शायद उन्हें ये मालूम पड़ गया हो कि हम बात पक्की होने से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे।
1: तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब प्यार करना कोई पाप नहीं है?
0: हमारी नजरों में नहीं है, पर उनकी नजरों में है पाप।
1: हर प्यार की अंतिम परिणति शादी होती है, और फिर हमारी शादी तो हमारे मां बापों ने ही तय की है, तब पाप का सवाल ही कहां उठता है?
0: ये डायलॉग मारने का समय नहीं है, ये सोचो अब हमें क्या करना है।
1: मैं बताऊं, एक-एक कप गरम-गरम कॉफी पीनी चाहिए। आओ चलो
0: कहाँ?
1: कॉफी पीने।
0: तुम्हें कॉफी सूझ रही है और मुझे जिंदगी की पड़ी है।
1: जिंदगी का भरोसा तो एक पल का भी नहीं है आशु। कॉफी कम से कम 5 मिनट तो चलेगी।
0: अब भी मजाक? अब तो ये मजाक छोड़ो, कुछ तो सोचो। ये क्या कर रहे हो?
1: कुछ सोच रहा हूं।
0: इधर उधर घूमते हुए?
1: हाँ, तुम्हें पता है बड़े बड़े लोग जब कुछ सोचते हैं तो यूं ही करते हैं।
0: सोचने का अगर यही तरीका है तो सारी उम्र यूं ही टहलते रहोगे। मेरी एक बात मानोगे?
1: क्या
0: तुम्हारे घर चलते हैं और उन लोगों को साफ साफ बता देते हैं।
1: क्या बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं?
0: हाँ,
1: नहीं, अगर उन्हें ये बात मालूम नहीं होगी तो भी मालूम पड़ जाएगी, और फिर मेरे डैडी भी ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे।
0: क्यों नहीं होने देंगे? कोर्ट में तो ना जाने कितने लव मैरिजेस करवाते रहते हैं, फिर हमारी शादी से इनकार क्यों करेंगे?
1: आशु, तुम यही तो नहीं जानती, लव और लव मैरिज दूसरों के घर और मोहल्ले में ही अच्छे लगते हैं, अपने घर में ये कोई भी नहीं देख सकता।
0: तुम्हारे डैडी भी?
1: हाँ, वो भी।
0: तो फिर क्या करें? अच्छा चलो, तुम्हारे घर चलकर उन लोगों को ये कह देते हैं कि अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो हम अपनी जान दे देंगे।
1: क्या बच्चों जैसी बातें करती हो आप! इस घिसी पिटी धमकी का असर किसी माँ बाप पे नहीं होता।
0: हम उनसे कह देंगे कि ये धमकी नहीं, चेतावनी है।
1: हमारी चेतावनी से पहले तुम्हारी और मेरी माँ जान देने को तैयार हो जाएंगे।
0: तो फिर यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और जो कुछ वो करते हैं उन्हें करने दें?
1: उनकी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो?
0: तो क्या अब अगली परीक्षा लोगे?
1: नहीं, मेरा मतलब है अपने माँ बाप के सामने कह सकोगी ये बात?
0: अरे बाबा, तुम जो कहोगे कह दूंगी, पर कुछ कहो तो सही।
1: अच्छा चलो,
0: कहाँ?
1: मेरे घर और कहाँ?
0: पर ये तो बताओ कि कहना क्या है।
1: चलो तो सही, वही सोचेंगे।

0: ओफो रवा, तुम भी बड़ी अजीब हो। मेरी डायरी या अमर की किताबों के बीच में रखने की क्या जरूरत थी?
1: है? अरे ये लेटर कैसा?
2: डायरी मिली नहीं क्या? अरे यही इसी टेबल पर रखी थी। ये क्या पढ़ रहे हो?
0: लेटर है
2: किसका?
0: तुम्हारी होने वाली बहू आशा का।
2: ये कोई अच्छी बात नहीं है जी, अभी से लेटर आने शुरू हो गए। अरे अगला 1 महीना ये कैसे निकालेंगे?
0: अरे अभी का होता तो कोई बात नहीं, ये तो सगाई से भी बहुत पहले का है।
2: क्या कह रहे हैं? जरा पढ़ना क्या लिखा है।
0: डियर अमर, ग्रेजुएशन कर रही हो और डियर की स्पेलिंग गलत लिखी।
2: अरे गलत है या सही, तुम आगे पढ़ो ना।
0: प्यार से प्यार भरा प्यार, ये कोई बात हुई?
1: तुम तो स्वीट लिखा कर

0: इतना।
1: लेकिन शादी के बाद आगे क्या लिखा है?
2: तुम्हारा यूं हफ्ते भर न मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता।
1: रुक क्यों गए? आगे पढ़ो ना, और क्या लिखा है?
2: तुम खुद ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ सकता ऐसी बेहुदा बातें।
1: लाओ मुझे दो। अगर कल तुम पार्क में नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे जान देना हंसी मजाक हो। तुम समझते क्यों नहीं अमर, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। अब मरने की क्या जरूरत है? तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी आशा। ये लो, संभालो अपने बेटे की आईएएस की डिग्री।
2: रमा तुम बिल्कुल ना समझो, ये सब पढ़ने के बाद भी नहीं समझी कि इसने मेरे बेटे को फंसाया।
1: हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा तो दूध पीता बच्चा है ना।
2: अरे तुम नहीं जानती इन लड़कियों को, कॉलेज में ये इसीलिए आती है। कोई पैसे वाले घर का लड़का देखा नहीं कि अपना जाल बिछा देती।
1: मैं तो पहले से ही जानती थी कि आपका लाडला जरूर कुछ गुल खिलाएगा। कभी टाइम पे घर नहीं आता था, पर आप थे कि कभी मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देते थे।
2: अपना अमर ऐसा नहीं है, जरूर कोई गहरी चाह है। ये रिश्ता तुम्हीने तो तय किया था, तुम कैसे फंस गई इस चाल में?
1: आप तो अब भी अपने लाडले की शादी नहीं करना चाहते थे। अगर थोड़ा और लेट हो जाते तो आपका आईएएस आपके लिए दादा की डिग्री जरूर ले आता।
2: क्या उल्टा सीधा बके जा रही हूँ, ये सोचो अब क्या करना है।
1: अब करने को रह ही क्या गया है, चुपचाप इनकी शादी करने में ही अपनी भलाई है।
2: नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, अब ये शादी नहीं होगी।
1: क्यों नहीं होगी? इसलिए कि दोनों आपस में प्यार करते हैं।
2: हाँ इसीलिए। फिर अरेंज मैरिज का मतलब ही क्या हुआ, ये तो लव मैरिज हो गई।
1: कुछ भी हो, अगर ये शादी ना हुई तो ये समाज क्या कहेगा? अरे कल दुनिया क्या कहेगी?
2: जो भी कहेगा लड़की वालों को कहेगा, हमें क्यों कहेगा? सबको मालूम होना चाहिए कि एक पुलिस ऑफिसर की बेटी
1: और तुम्हारा बेटा कुछ नहीं।
3: आइए मिस्टर गुप्ता।
4: वकील साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक बाप होने के नाते आपने जो जिम्मेदारी निभाई है उस पर मुझे अफसोस होता है।
3: फिर भी आपसे अच्छी तरह निभाई है।
4: मैंने अपनी बेटी का रिश्ता आपके लड़के से इसलिए मंजूर किया था कि आप एक इज्जतदार और खानदानी आदमी हैं।
3: आप तो
4: लेकिन अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपका बेटा आवारा और बदचलन है।
3: आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं?
4: वो किसी लड़की से प्यार करता था।
3: किसी लड़की से?
4: हाँ हाँ, किसी लड़की से।
3: कहीं वो लड़की आपकी बेटी आशा तो नहीं?
4: वकील साहब होश में आइए, आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? मैं आप पर मानहानि का दावा कर सकता हूँ।
3: अच्छा, अरे वकील तो मैं हूँ और दावा आप करेंगे?
4: हाँ, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अपनी सीधी सारी लड़की के बारे में इस तरह की वाहियात बातें सही नहीं करूंगा। ये जो लांछन लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास?
3: वकील कभी बिना सबूत के कोई बात नहीं करता, आपको सबूत चाहिए ना? ये लीजिए, ये रहा सबूत, खुद पढ़ लीजिए ये लेटर। अपनी बेटी की हैंडराइटिंग तो आप पहचानते ही होंगे।
4: ये सब
3: आपकी चाल है मिस्टर गुप्ता, आपने अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरे नादान इकलौते बेटे को प्यार के जाल में फंसाया।
4: नहीं, ये झूठ है।
3: सिर्फ यही सच है। आप चाहते थे कि आपकी बेटी मेरे अमर के गले बांध दे ताकि दहेज भी न देना पड़े और बहुत पैसे वाला एक घर भी मिल जाए। अरे एक हम हैं, जब आप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे तो हमने दहेज की बात तक नहीं की।
4: लेकिन
3: मैं आप कुछ नहीं सुनना चाहता, समझ लो आज से ये रिश्ता खत्म।
5: हाँ, आप लोगों ने जो रिश्ता बनाया था।
6: क्या मतलब?
7: जो रिश्ता आप लोग हम दोनों से पूछे बगैर जोड़ सकते हैं वो आप लोग तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हर बार आप लोगों की इज्जत का सवाल रहता है, किसी की जिंदगी से आप लोगों का कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने और आशा ने जब अपनी जिंदगियों का रिश्ता जोड़ा था तब आप लोगों से पूछ के नहीं जोड़ा था, और कोई पूछता भी नहीं है। आओ आशा, हम लोग कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं।
3: रुक जाओ आशा,
4: मेरी बात सुनो बेटा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाटक जिसका शीर्षक था एक सफर छोटा सा। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत फिजा फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म का नाम था दिल चाहता है। आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल ही दिल में।

अभी आपने चलते चलते फिल्म का ये गीत सुना, आइए आपको सुनाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में देवदास फिल्म का ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी हिंदी में समाचारों को और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों को, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे।

0: संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।